जो तुम दे सो कहां स्वामी, मैं मूर्ख तहन ना जाई। ठीक फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया कई न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक, है है है सब जग भयो। जय जय जय।

भीतर मरता मरता जग मुआ, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए।

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईआं ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता की आग्ञा नूं सत करके अपने सिर

साबिद तुम्हार जानो आपे, खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे खम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमत प्यारे सतसंगी जनों, अज दे इस विशेष हफ्तावारी दीवान दी हाजरी आप जी ने गुरु कृपा दे नाल भरी है और सतगुरां जी दे पावन पवित्र इलाके बचना दा कीर्तन आप जी नूं साडे अति सत्कार योग इस दर कर दे गुरु के झाड़ू बरदार गुरु के वजीर भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी भाई अमरजीत सिंह जी हजूर दी इलाही गुरबाणी नाल आपां नूं जोड़ रहे सन। आओ जो पिछले हफ्ते एक अर्ज कीती सी कि जदों भी ये दसंबर का महीना हर साल आउंदा ते ये दसंबर का महीना जे किते कोई बैराग ते टिके कोई किरदे वाला प्रचोले ते उस दे किरदे नूं उस दे अंदर नूं चंजूण के चला जांदा। आपां इस अत दी सर्दी दे महीने विच भावें हिंदुस्तान दी धरती भावें बाहर आप बैठे हो, इस अत दी सर्दी दे मौसम विच आपां घर निग माने हां, अपने बच्चियां नूं अपने माता पिता नाल अपने परिवार विच सुख आनंद नाल दिन कढ़ने हां, पर जदों किते तवारीख दे हिस्ट्री दे इतिहास दे पन्नियां नूं पलट के देखो ते अज तो 300 साल पिछे चले जाओ ते हैरानगी हुंदी है, सन 1704 दसंबर दा महीना जेड़े गुरु के सिखा उस महीने दा एक एक दिन किते तू पढ़े श्रद्धा भावना नाल ते देख गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दसवां गुरुदेव उन्हें इस महीने विच किन्नी कु वड्डी कुर्बानी सिख सिख लई कर दित्ती, अपने पुत्र अपने सत्कार योग माता अपने बेगमपुरे वर्गे शहर आनंदपुर साहब की धरती नूं त्याग के सब कुछ लेखे ला के उस अकाल दे शुकर विच जुड़ के तेरे लिए गुरु जिहड़ा परमेश्वर दे दर तो दुआवां ही मंगदा रहा ते चित कीता सी जिथे इस महीने विच साके आउणे ने उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी दे इतिहास विच जिहड़ी पहली लड़ाई होई है

तुम्हारे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा। जब गुर बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राखे

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले

दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा खौ करी वखियान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा खौ करी वखियान। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी हफ्तावारी दीवान विच सतगुरु दे पवित्र चरण स्पर्श करन वास्ते साहिबां दी प्यारी गोद विच इकत्र होए बैठे हो। जिवें आप जी नूं इह सब नूं जानकारी है कि 27 जून नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दी बरसी सी, जिस नूं आपां अज सतगुरु दे घर अंदर मना रहे हां। आपने बड़े प्यार दे नाल कीर्तन भी सरवण कीता है और गुरमुख प्यारियां तों उस दृश्य नूं तवारीख दे उस पन्ने नूं सरवण कीता जदों महाराणी जिंद कौर अपने सपुत्र दे शीश ते केस ना देख के उसने सब कुछ सह लिया अपने उते, पर इनू ना सह सकी कि कलगी वाले दी मोर मेरे पुत्र दे सिर तो गुम हो जाए। आओ उस शेरे पंजाब दे जीवन दे समाचार तुहाडे नाल आप संगत नाल सांझे करने ने। मैं सिर्फ उन्हां दी जीवनी विचों पख उन्हां को आप नाल सांझा करना, समय अंदर रह के उस दे जीवन नूं तक के साडी साडे गुरु नाल बण आवे, उस दे जीवन नूं पढ़ के उहदी निर्माणता नूं तक के असी अपने अतीत वल अपने उन्हां बजुर्गां दे इतिहास तों जाणू हो सकीए जिन्हां दीआं बाहवां विच वी ताकत बड़ी है ते निम्रता दे वी पुंज सन। आओ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब मेहर करे आप किरपा करके विच वरते, मेरा सतगुरु किरपा करके

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

0: बरा से हर गोविंद चंद को बोलन हर हारे सुन चंदू चिंतायत अनक पाओ विचार चौवे
1: वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु

और है दो शब्द उन्होंने कीर्तन विच असानू सरवण कराए ने। पहला शब्द सी तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकू, तू ठाकुर ऊच भगवान। सहज धन गुरु रामदास कृपालू जी का उच्चारण किया हुआ यह शब्द, जिस विच दातार ने उस परम पिता परमेश्वर वाहगुरु जी के गुणा नु जिथे बयान किया है, उसे एक सानू गल दृढ़ करा दिती कि मैं अपनी जिंदगी विच केवल सहारा परमात्मा का लिया है। दुख होवे, सुख होवे, खुशी होवे, गमी होवे, मैं अपने साई तो बिना कभी किसी अगे पुकार नहीं की। शब्द आपां सरवण कीता है, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आ गए अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पह करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। एक कृपालता होर गुरु रामदास जी ने की, कहिंदे ने कई बारी असी परमेश्वर दे गुणा दी जदों गल करने हैं ते कोई घटना हैरानी पैदा करने वाली वापर जाए ते असी सोचने हैं कि ये हो सकता है। मेरे धन गुरु रामदास जी ने नाल एक प्रमाण उदाहरण वजो दिता, कहिंदे ने परमेश्वर दी इन्नी वडियाई है जिस बंदे नू कोई नहीं जानदा, जे परमात्मा मेहर करे ते उहनू सारी धरती का बादशाह बना सकता है। महाराज ये किवें हो सकदा है? साहब कहिंदे ने हो सकदा है, जो असंभव है वह संभव हो सकता है। ते नाल उदाहरण की दिती, कहन लगे देख उन्हें बकरी ते शेर नू एक थां ते बने। अज तिकड़ा कभी तके है कि बकरी ते शेर एक किले ते बजे कौन? साहब कहिंदे ने विचे धरती, विचे पानी, विच कास्ट अगणतरी जै, देख तीन हिस्सा पानी है, एक ही हिस्सा धरती है, ते परमात्मा ने इस धरती नू अपनी खिच दे के चार चुफेरे पानी खोण दे बावजूद टिकाया है। यह मानो जिवें उन्हें बकरी ते शेर दोनों टिकट से बने हुए, चार चुफेरे पानी है। आपां जदों गलोब नू तकने हैं, चार चुफेरे पानी पानी सानू नजर आउंदा है, धरती का किन्ना कु हिस्सा है? साहब कहिंदे विचे धरती, विचे पानी, विच कास्ट अगणतरी जै, बकरी सिंह एक तय थाए रख है, मन हर जप भरम पाओ दूर कीजे। जे पानी विच धरती नू टिकाई बैठा है ते मना कल्पी ना जा, रब नू सिमरिया करो, तेरे भी डर जरूर दूर करेगा। दूजा शब्द गुरमुखा ने सरवण कराया कि शाम सुंदर तज नींद क्यों आई, महा मोहनी दूता लह। शब्द विच परमाणु ना बड़े बैराग दे भिजे दिते। मैं इस करके अर्ज कर रहा हूं क्योंकि आपां इह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विचों सरवण कीते ने, ते इस मैं बेनती कर दिया गुरु के सिखो, राग तां इक भांडा है। मैं कहना कि गुरु साहिब दे बाजमुखी किते चरण पै जाण, असीं कहने आ इह घर भागां वाला है जी, इत्थे गुरु दे चरण पै गए। जिस गड्डी विच गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप लिजाइए, आपां उस गड्डी नूं देख के झोके नमस्कारा करने आ, क्यों? ये मेरे साहब की असवारी भी आती है। मैं कहना राग किन्ना कु पवित्र है जिस भांडे विच मेरे बाबे नानक का शब्द टिकिया हुआ। राग ता वो सेज है जिथे गुरु का शब्द निवास करता है, पर बदकिस्मती है मैं शब्द ता वरत्या है। दिनों दिन आपां देखने पाया मेहनत वाले, घालना घालन वाले, अपनी जिंदगी नूं समर्पित होके चलन वाले। मैं पिछले दिन एक बेनती की आना, मैं इतिहास से वे एक शब्द हुंदा लोड़, एक शब्द हुंदा लगन। लोड़ विच ते लगन विच जमीन आसमान का फर्क है। जिन्नी देर तक मेरी लोड़ है मैं कथा करनी, मेरी रोटी नहीं चल रही। जितने मेरा काम बन गया मैं कह दिता चलो जी अज तो बाद काम छड़ गया, इहदा मतलब वो मेरी लोड़ सी। लोड़ वाले बंदे छड़ के जांदे नहीं, पर लगन वाले बंदे मरदे दम तक उस कला नूं समर्पित रहिंदे। रब मेहर करे कि लगन पैदा हो जाए, केवल लोड़ तक सीमित ना रहिए। आपां दूसरा शब्द सरवण कीता है
ਸ਼ਾਨ ਸੁੰਦਰ ਤਾਜੇ।

0: के उल्टाई पुत्र जब
1: राम राम उल्टाती मिट्टी मुसलमान की सा बेईमान की कहता
0: त्याग दियो लख साठ
1: मूर्खताई है समझ करके गुरु नानक की बाणी उल्टाई है छड़का मारा राम राम।

करता है। कमरुद्दीन का पुत्र है, कमरुद्दीन मोहम्मद शाह रंगीले का उच्च पदवी का करिंदा है, नौकर है। मीर मनु ने एक चाल खेडी, उन पता लग गया भी मेरा पिता चढ़ाई कर गया, मर गया है कमरुद्दीन। उन्हें उन सरहाने लाके हाथी उत्ते बिठा के सरहाने लाके इस तरह ले आंदा भी जिवें ओ फौज नू कमांड दे रहा होवे। मीर मनु उन पता सी भी जे किते ऐसा ना होया ते हो सकदा अहमद शाह अब्दाली दी फौज मैनू लुट के खा जाएगी। बड़े तकड़े सन ओह लड़न विच जिहड़े अब्दाली सन अफगानी। अज भी तुसी देखो, मेरा कहना तो फर्ज नहीं बनता, अज भी देखो अफगानिस्तान ने सारी दुनिया के नक विच साह किया होया है, लेकिन वह अफगानी गुरु के सिखा अगे किवें भजदे सन, जो जो अगे आया तुहाडे नाल सांझ पावांगा, किवें तरले करदे सन उह सिखां दे। ऐस वेले जदों उन्हें मीर मन्नू ने अपने बापू नूं हाथी ते बिठा के सरहाने ला के ते उन्हें अपने वालों जंग विच लै आंदा, ते उस वेले अहमद शाह अब्दाली की किस्मत माड़ी, उन साथ नहीं दिता किस्मत ने। हालांकि वह जित रहा है, उहदा हथ उत्ते है, मीर मन्नू हार रहा है, उहदियां फौजां कोल इन्नी ताकत नहीं भी वह जित सके। उदों अचानक एक भाणा वरत्या, भाणा यह वरत्या भई उस वेले एक गोला जदों मारिया तां गोले दे कुछ शरे, गोले दे कुछ दाने ओह इस अहमद शाह अब्दाली दे जेड़े गड्ढे असले नाल भरे हुए सन उन्हां विच जाके डिग पए, ते जदों उन्हां विच डिगे जाके ओह असला चल पिया, जेड़े तीर सन तीर भी चल पे, जेड़ियां गोलियां सन गोलियां चल पईआं, जेड़े गोले सन ओह गोले चल पे। इहदी फौज विच बड़ी भज दौड़ मच गई, क्योंकि वह जिहड़ा असला सी वह है तो इहदी फौज विच सी, वह सारा वह भज दौड़ मच गई ते इहनू संभालना औखा हो गया। आखिरकार उस वेले हारदा होया मीर मन्नू, जितदा होया अहमद शाह अब्दाली, इहदी किस्मत ने साथ ना देण करके इहदी फौज इन्नी कटावड्डी विच उत्थे बर्बाद हो गई ते उस विच असले विच मारी गई, ते इह उत्थों भज उठिया ते इहने वापस परतना शुरू कर दिता। वापस आया, कुछ दिन लाहौर रुकिया, एक दो दिन ही लाहौर रुकिया ते मुड़के उत्थों फिर तुर पिया। हुण फिर ध्यान दिओ, जदों इह मुड़के मैं वापस जा रहा सी तां उहनां दिनां विच गुरु के सिखां ने, बहुत ध्यान देण योग बात है, 26 मार्च नूं इहनू 1748 नूं फिर दुबारे इहनू मुड़े जांदे नूं चनाब दे किनारे, जो अगे लड़ी आएगी मैं तुहानूं उदों सांझ करांगा। हुण चढ़त सिंह शुकर चकिया, यह चढ़त सिंह महाराजा रणजीत सिंह दा दादा है। इस चढ़त सिंह ने उस अब्दाली नूं चनाब तो पार तक भजा के आंदा, एडी सूरमा सी इहने सामने नहीं सी खलो सकदा अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली नूं इन्हां ने उत्थों भजा के आंदा ते उहदे कोल कुछ एक साजो समान भी लुटिया। फिर गुरु के सिख जदों इधरले पासे सारा कुछ हो रहा सी तां उहनां दिनां दे विच एक टुकड़ा फौज दा इहदे मगर लग्गिया होया, चरत सिंह शुकर चकिया। दूजे पासे आ जाइए, अमृतसर साहब दी धरती दे उत्ते जदों इह पता लग्गिया सी भी अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, उदों गुरु के सिख सन जिहड़े अपने परिवारां नूं, कुछ एक नूं अमृतसर साहब, कुछ एक नूं गुरदासपुर ते इत्यादि को चंगे चंगे टिकाणा ते अपना परिवारां नूं छड्ड के आप फिर जंगली चले गए सन। जदों उन्हां नूं पता लग्गिया ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫੜਾ ਦਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਸਿੰਘ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ। ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ
ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ